जी बिल्कुल, प्रोग्राम अभी ठीक था 1 बजे पर रही वही प्रोग्राम की तो कॉल हम कबल मैसेज कबल बिल्कुल कॉल कबल 0927291292 बने यानी पर 0927291292 भी नहीं बंदे बिल्कुल प्रोग्राम से लाइव कॉल कबल और दिन लो मैसेज हम कबल मैसेज तरीका हाँ दे दे रहा सुना मोबाइल केवल उठ से राइट या क्रिएट ऑप्शन था सर तक मैसेज लिखे ऐसे ही तब लोट चलते कि बोली

कॉल बिल कुछ मिलेगी, मैसेज भी मिलेगी, ठीक था? ओ बोला था ची गर्मी जी को मत करना, गर्मी के वरिष्ठ फवरेज सफा कीजिए। और बिल्कुल नंद 30 जून इन 30 जून और जून तकरीबन बिल्कुल बस से खत्म शो है। ये दिन बाद जुलाई में शुरू कीजिए, 9 जुलाई और अगस्त को दे तकरीबन 2 महीने से गर्मी भी।

हाँ जी बिल्कुल वर्जी, ये सॉन्ग उधर बने प्रोग्राम की ये सॉन्ग शामिल है, उर्दू सॉन्ग शामिल है, ठीक था। और दिन बाद व्याजर रसी प्रोग्राम की बिल्कुल कॉल शामिल है, मैसेज शामिल है, सही था ना बिल्कुल वर्जी, यो सॉन्ग उधर बने प्रोग्राम की और भी ये सॉन्ग के दे सॉन्ग ने बात सुन दे बिया जरूर सी बिल्कुल तो चर्ता के नजे रेडियो ओमन 88.4 करेक्सरा उसे।

حجز بها هركلي سونغ نبقى طول من ولدها بالقل ما تبيلي شي صبو دبر تاريك अच्छा जी बिल्कुल मैसेज कर रहे वही कहना चाह रहे वाह ये स्टाइल मैसेज के जमा अच्छा जी एंड बीजेम से एंड वेलकम टू द शो में ग्रेट मलिका डेरा मने ना ग्रेट मलिका लो यहां से और तारिक ये विजय मॉर्निंग शो के साथ फिट होगी एंड शी इज कूल एंड वंडरफुल वेलकम वी ऑल सी फ्रेंड ग्रेट मलिका थैंक यू ग्रेट मलिका डेरा डेरा मनना तरहान मैसेज करे दे इट्स मी तरहान सलाम एंड वेलकम तारिक खान वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना थैंक यू और तारिक मेरे साथ छोटा शानी गुल हैं और कह रही है कि और कह रही है कि ये कौन है और आपका बीजीएम उसको बहुत पसंद आया मुझे कह रही हैं कि आप ही जान इसको मैसेज करो कि आप खामोश हो जाए मुझे ये सॉन्ग सुनना है अच्छा जी और तारिक स्वीट शानी को वेलकम करो मिग्रेट मलिका अच्छा जी डेरा मने ना ग्रेट मलिका मैसेज को बोले और शानी गोल प्रोग्राम फर्स्ट टाइम और भी अगर था प्रोग्राम के वेलकम यो जहान मने ना दिन और नेक्स्ट मैच रोकला इस्लाम भाई सरंग ये शे भाई वैसे तो ना यो सवाल कहो यू क्वेश्चन दर ना कहो चे डुमेल जोन था डिस्ट्रिक्ट दाई क्या तहसील है वाह जी वाह

ओए सर, ये क्या आपने मैं अपने घर की लाडली हूँ, मेरे घर में मुझे कोई नहीं डांटता, मैं तैयार खाना खा रही हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ मैसेज कर दे, माशाल्लाह ढेर जबरदस्त। थैंक यू, मैसेज कर लो डेरा बना ना। खजीवेश तारिक भाई, माई सलाम टू नादिया, सोनिया खान, फरिश्ता एंड अलीना मनाहिल, मैसेज करने दे। बिल्कुल कहा शोर भी कहना सलाम बदे, बिल्कुल कबल खड़े भी तेरा मनाना मनाहिल लो या खजी। नेक्स्ट माई स्वीट बाई, माई बर्फी बाई, शो सो स्वीट दो ओके, पापा की परी द ओनली वन, दिल रुबा हटक बाई, सलाम में वेर का अनमोल खटकता हूँ। ठीक शुभ सागे तो दिसलोम वरा से दो डेरा मनाना। वी आई कहना चाहिए। नेक्स्ट बाई लतम्बर।

पेपर का सॉरी दस ऐसा मैसेज करो पॉइंट नहीं सुन डेरा मना ना मैसेज के वाले विषय भाई व्यर्थव्याया अलता पता नहीं सब मैसेज करे तो खुद मैसेज बने बीखी ना भाई डेरा मरना चाह मैसेज करे दे

तारिक शुक्र शुक्र छे न्यू दे मड़ा दो ना गोरा लतला दे हर हर सड़ी द हर चा न्यू गाड़ी न्यू गाड़ी चुकम दी अमी गाने चुकम दी आगा चम दई लरी वेच मीज न्यू दुमरा गुसना कवा मोवे तवेल

0: अच्छा नेक्स्ट भाई के यहाँ रखिए फटक में जनाब मोहब्बत नाप तोल कर मिलने लगे और इज्जत शर्तों के साथ दी जाए तो ऐसा ताल्लुक अच्छा सत के में दे देना चाहिए वाह जिवा रखे वो मुकाबिल गुलाब क्या होगा तो खुद ही गुलाब है तेरा जवाब क्या होगा वाजिब वाह तुमरा अक्षर है शेर यो जहान मनाना थैंक यू सो वेरी मच नेक्स्ट भाई जी मिक्यू टू जहान स्वीट भाई जानी भाई यू वेलकम टू फतुनो था बिल्कुल जहान मनाते हैं सो वेरी मच नेक्स्ट भाई जी मिक्रो जहान स्वीट भाई जानी भाई यू भाई जी तस्वीर हर शी सरोवर कर पूरा बहना कड़म आरजेके की तरीफ ना ओ आचे वा दा खबर यो जहान मना ना
1: ब्याकडी परी के पड़ेवा चावलो खानो के सो कड़म खुदाया सब
0: नेक्स्ट भाई कहना जी मिक्रो जहान ये लाइन मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे स्वीट भाई जानी के लिए जैसे

0: अच्छा ये लाइन मेरे बेस्ट फ्रेंड अच्छा मेरे बेस्ट फ्रेंड आईना के लिए और स्वीट भाई जाने के लिए ओके ओके जी जिससे सच्ची दोस्ती की जाती है उसकी इज्जत मोहब्बत से भी ज्यादा की जाती है वाचे वाटे शाम देर पर जड़प हो रही ये जहान मन है ना नेक्स्ट वीक ना चिमी क्यूटर शिखा ना हमारे स्वीट भाई जानी जब बोलता है तो ऐसा भल से लगता है जैसा कि उसके बाद उसे फूल झड़ते हैं जहान मनाते हैं कि सो वेरी मच दे तो से मैंने दादे पलो रुनु सरा दे रेडियो मन खरक सरा यो जहान मन नाते हैं कि सो वेरी मच ओके जी नेक्स्ट मैसेजेस से देखना बात के शामिल हूं टिक्सा दैट वाज के मैसेजेस रो खाली उसका मैं शामिल कर लियो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच और दे सरा से फरनो सदा 291 292 दिलारी जना बिल्कुल काल ब गुरु जी मिश्रा फर्स्ट कलर सोखता है ओ मिश्रा बसो शामिल है जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब सो कर सर खबर की दिक्कत जना मैं बिल्कुल ठीक ठाक सारा वेलकम टू द शो हिमगढ़ी माजीगर के प्रोग्राम के डेढ़ वेलकम हर कलै जी अयानो
1: थैंक यू सो वेरी मच
0: सारा कॉल करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच और टाइम बहुत कम होता है और तू क्या शामिल करना चाहोगी प्रोग्राम में
1: शामिल तो बस यही करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा सख्त गर्मी है
0: गर्मी का नाम न लेना मैंने स्टार्ट में बताया फिर गर्मी ज्यादा लगती है
1: वही इतने ज्यादा लगती है कल शादी पे गए थे अभी तक दिल से वो गर्मी नहीं निकल रही
0: गर्मी में भी लोग शादी करते हैं
1: हाँ वही इतने मजबूरन जाना पड़ा दोस्त की शादी थी उधर गए थे हम अभी तक इतनी गर्मी लग रही है लेकिन अभी तो मौसम अच्छा हुआ है
0: फिर आपने नाम लिया गर्मी का
1: नहीं बस मौसम अच्छा हुआ है
0: सही सही सही सही कॉल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच और घर में सब ठीक ठाक है
1: बिल्कुल ठीक ठाक है आप सुनाए आप कैसे
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट
1: तारिक भाई कैसा है
0: वो भी जी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और आपके साथ इंशाल्लाह आज रात को बिल्कुल प्रोग्राम में मुलाकात होगी
1: हम उन शो का इंतजार करेंगे आप लोगों का शो का और आपने स्टार्ट में हमारे लिए एक उर्दू की प्यारी सी गजल शामिल करनी है और टाइम ज्यादा नहीं लेती कृष्णर को दुआ सलाम और आपको स्पेशल सलाम शो बहुत अच्छा है
0: थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज सारा फ्रॉम बानू थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग

0: हाँ नेक्स्ट वही कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम राज खान। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुह। वही कहना चाहिए जदे मंडान और दे यानी मंडान बनो ना जिया नूर दागा ने वाला गवा पदी दनुनो पबंदी वाला गिदा। अच्छा पबंदी नष्ट बेचा कोशिश तक है वहाँ जी अनूर यू जहान मनन है मंडान बनू ना। थैंक यू सो वेरी मच द मैसेज का बोलो दोबारा चा मैसेज ना रुना पोधे ने जी वही जी सलाम उन्हें चाचू जाना ओके से वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वही जी तुमरा खोगा शो कवे के ना उदासी नसीहत तूने
1: अर्थ कवे के ना
0: अल्लाह का अमी
1: भाई जी साहब खुरे खड़े कहते करेंगे ना।

ओवा देखंदा वाला छा तकड़ा है छा भाई छे मी क्यूटर छे खाना फार छे मी क्यूटर छे खाना फार मेरे ओ वफादार फ्रेंड आसमा सीता अच्छा मुझे अपनी दोस्ती पे इतना यकीन तो है कि वो मुझे छोड़ सकती है मगर भूल नहीं सकती डेशन रुशिहान यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच अच्छा दे सारा सारा कहना कहना कहना कहना कहना चना बिल्कुल सही गोरा सर अच्छा ची ची बिल्कुल दरस ठीक से ची ची ची

पनी मशपेठा फेरा उखड़ा या पनी मशपेठा फेरा उखड़ा यार में बैल ले दे यवा से नासिया मा ओ पता बसंग अश्पति रेगी या पता बसंग अश्पति रेगी ओ पमाच अश्पशी ले वने दर पसे शमा वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम।

सोचना बिल्कुल एक दो शे उर्दू लेसनर्स के लिए। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगे, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगे। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। जमाना जान गया था कितने वफादार है हम, जमाना जान गया था कितने वफादार है हम, मगर तुम्हें ये बात समझाने में बहुत देर लगी जी।

वेलकम जी रकीब खटक, वेलकम टू द शो रोजाना यो जहान मनना। थैंक यू सो वेरी मच भला शांति तो से मैसेजेस जरूर वन खदी रुचि हां टोल मैसेजेस सीधा वहां प्रोग्राम हिस्सा जुड़े वो हो बेल हद से चल बगे गना छे काल में देख जुन न मस्त तरीके वे काल वो रस्तो शामिल हो ठीक था दे काल पे चक्कर के आगा शो तो से न टोला खरो पे सी यानी के शो देना मैच छे बिल्कुल दोस्त अभी हुई इना सुन में वो कुछ उस काल से मिला हो गया ना एसएमएस पर खर्च मिला हो पर हाल प्रोग्राम रो सर और प्रोग्राम एंजॉय गए सा जी भला शांत है मैसेजेज रो गली बिल्कुल दिल रुबा हटक रकीब खटक मनाहिल जी बिल्कुल दे सरा सरा ग्रेड मलिगा इलावा जना भला शांति तो मैसेज खदी ब्याह डिटेल सर शामिल हो शाम सैफुल्ला जी बिल्कुल मैसेज करे प्रोग्राम एंजॉय कर जे हाँ तो सर जना बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवा सौग जी बिल्कुल वही जिसका इंतजार था वो जना बिल्कुल हम मेरा साथी हमकार यारों का यार क्यूट शूट सुपर डुपर आहिस्ता नजवले

0: ये आपके रोसार पे छोटा सा जो तिल है, चेहरे पे यही चीज टिकाने की पड़ी है।
1: जी
0: जबरदस्त, उसमें आवाज सही सुन दास तो
1: बिल्कुल दास बिल्कुल आवाज तो सवाल है जी,
0: उसमें आवाज सही सुन
1: बिल्कुल आवाज सफा
0: ए दास तो
1: बिल्कुल दास दो
0: सही। डरता हूँ मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, हर वक्त मुझे उसको मनाने की पड़ी है। ओके जी तुम रेडी रहो
1: शाह सही
0: सही और दे तरह सरा बिल्कुल खुश हो रही दुन को चूंकि दे मिज तगे प्रोग्राम चेदा आगा दिस्तोर महफिल नो तरनुम चेदा गा बिल्कुल इवा हिस्सा था
1: जी।
0: और मैंने जिस से बिल्कुल प्रोग्राम के टाइम मैसेजेस हम बला शांत मैसेजेस बड़ा अवश्य मिले हुई सही था
1: जी।
0: और नो उससे देखो शायद तरनुम तरफ तस्वीर सही था
1: जी,
0: चलेंगे देखो शायद
1: बिल्कुल खुश में दो
0: सही स्टार्ट अला
1: शाह
0: जी जी सही सही ए दास तो
1: दास ही दुकान है बिल्कुल शाह खजी बिल्कुल मैसेजेस व्हाट्सएप से कॉल बिल्कुल शामिल है
0: जी तारा नाम तो सही बिल्कुल चूंकि दीदी प्रोग्राम में हिस्सा था नो हिस्सा चेदा बिल्कुल आगे पूरा करने की कोशिश करूं
1: जी।
0: हाँ जी बिल्कुल उस ठीक था पछगुन केगी पशोर नकेगी पछगुन

0: हाँ जी डेरा मनाना नेक्स्ट मैसेज करे दाई फॉर द बेस्ट शो स्टोरो द महफिल यारान दीदा गुलब गुल यारान जारी लका की सोना शम दी लका बुलबुल यारान शो के छे एंट्री वके शो के चे एंट्री वकी खये स्टाइली वकी दागा तरिखान वजीर खुले ये बीखी वकी नम नम द बल गजल राज भाई द लमे गुल राज भाई लाल में गुल लेसर एहतराम के भी रये दे देर लोई महल मखकोलो के सिंपल तर गुल ना गुलब गुल तारिक नास कवि अदा कवि दे जमोंग अखपल अच्छा मैं इनोसेंट मलिका डेरा मनाना थैंक यू मैसेज के वाले
1: यू जहान मनाना
0: डेरा मनाना
1: बेहतरीन कोशिश था
0: जी यू जहान मना मैसेज के वाले ओवेचे अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द स्टोरी महफिल शो अवर यू शेरीना राज मामो एंड सुबह डुबर तारीख पखेर रागलीद वाड़ो में इनोसेंट ग्रेट मलिका डेरा मनना थैंक यू मैसेज
1: सो वेरी मच
0: जी यो जहान मनना प्रोग्राम से मैसेज को ब्याह मैसेज कर दे राज मामो सूर महफिल शो में सम डेरा मिस कवल लामो आबाद लराद वाड़ा में ग्रेट मलिका
1: आमीन सुम आमीन दे ठोल और इदन को सरे जी
0: जी डेरा मनना और यही कहना चाहिए फरह हफ्सा नीलमा साजुदाईदा और लंबा दा साजुदाईदा और लंबा दा जदिप वसम खुदाईदा नूर दरना सतीना
1: वाह वाह
0: ग्रेट मलिका मैसेज कर डेरा मनना जी थैंक यू मैसेज के बोले यू जहान मनना

0: हाँ चाहे ठीक था यू जहान मनन हाँ चाकड़े मैसेज मन्नत हाँ चाका थैंक यू सो वेरी मच. नेक्स्ट वाइज इट्स मी तारा खान. सलाम तारिक खान, क्या हाल चाल है? शो लाजवाब है आप दोनों की तरह. जी राज भाई को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप राज भाई? तारिक खान आप लोगों की तरह अच्छा गर्मी है कि नहीं? हम अच्छा आप तरह, आपकी तरफ गर्मी है? नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है. ठीक है, हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एसी लगा हुआ है. ठीक है, ठंडा या अच्छा सही वही कहना चाहिए जवाब गर्मी दशा नो गर्मी मौसम हर तरफ थे गर्मी दशा. तारा खान यो जहान मनना दे मैसेज का वल है. थैंक यू सो वेरी मच. इट्स मी तारा खान विद सारा. अच्छा ओके जी विद सारा खान. अच्छा राज भाई मुझे लगा है आप पंजाबी बोल सकते हो लेकिन आप तो अरबी भी बोलोगे. अच्छा बोलने लगे हो. तारिक खान अल्लाह आपको दोनों को हमेशा खुश रखे. वही जी आबादा से देश सारा सारा गाना वही छे अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे. जी बिल्कुल बस दस दस मुझ बाबू दोनों के तो बड़ा डेरे डेरे रबे हुए उषा सही दे कहना चाउरीदून की बस सना सा दीदी प्रोफेसर माने खुशी रोडू सा
1: जी बिल्कुल ला
0: सर के खुश सदा
1: पंजुपे की
0: ना यही कहना है चिराज भाई तो पंजुपी दे पंजुपे की खबर के वाले वरदले मो पंजुपी का लगा ले जब यहां है ना.
1: अच्छा
0: नो ये चिनन खुद अरबी का माशाल्लाह वे लगा ना नो जब तक इनसे मुझ खौरीदून के पर आई चागो दे खुश है दे प्रोजेक्ट की खैर दे रे रे शबे बोए
1: जी
0: सही सही
1: बिल्कुल ला
0: अच्छा ना वाला खलश के लश के रूसी
1: उस टाइम खत्म था जब तब या वो कड़कड़ खोंदे वाले मैसेज नो टाइम ब्याह चाइना वाला खाल
0: जी ए लश्की लश्की रुसी
1: सही
0: ओके जी नेक्स्ट प्रोग्राम के जरा भाई जिंदगी तो जीना है. मन्नत हैटक तारिक सर हम दिस पोस्ट्री फॉर यू चांद सो जाओ हम मजबूर बैठे हैं जिसको हम याद करते हैं वो हमसे दूर बैठे हैं. और अच्छा तारिक सर दस यकी नींदा माहो अच्छा ओके चिक्सा सही देगा ना बस किधर है शीदा से शाह यू जहान मनन है मन्नत हाटक. थैंक यू सो वेरी मच द मैसेज का वालो. इट्स मी तारा खान वही छे विद सारा खान वही छे तारिक खान पोपो की तरफ से सख्त सख्त सलाम कबूल कर लो.
1: वालेकुम
0: माय सलाम टू मायरा अरमान सोनिया खान रोशी खान तारिक वो अच्छा इकरा वजीर था हेफसा दिलरुबा था माही हटक था नादिया बहार था और फातिमा वजीरस्तान था और फरिश्ता था आयन था गुलाल अच्छा गुल्लोनी था जरलाल था छोटे अक्स था और स्पेशल सलाम अब मेरे दादी को. जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु. थैंक यू सो वेरी मच. नेक्स्ट भाई कहना चाहिए राज भाई आज मुझे भी उर्दू का एक गजल डेडिकेट कर दो. ओके जी उस भी ही टाइम खत्म शवेद अच्छा ठीक था कहना अच्छा मैसेज दीदा जरूर शामिल कुछ मैसेज बहुत अच्छा और सही था आखिर शामिल आऊँ भाई जी बच्चों को न कहेगी पशोर न कहेगी गाने व यार हो तारिक जोर न कहेगी खा अच्छा मैसेज देना उड़े तो का ना वैसे पछगो नखेगी पशोर नखेगी गानी वयल खो तरिक पजोर नखेगी यार तेरे वराने दिशा सही वही छे एंड आउटस्टैंडिंग सॉन्ग द नजर है मशो माही हटक अच्छा अच्छा अच्छा मैसेज हो गया ओके शो के प्लीज और ग्रेट मालिक आया सही ग्रेट मालिक आए वो मखंदा बोलू शाह बिजमो वखंदा बोलू यो जहान मना दे मैसेज का बोले बच्चे इट्स मी तारा खान तारिक खान माशाल्लाह वेरी नाइस आ वो जो जी तारिक खान वेरी नाइस आ वो जो वही छाई अहमदाबड़ा जलका है नेक्स्ट मैसेज वही छे सलाम मालिक छे वेरी अच्छे
1: जी थैंक यू
0: दे मैसेज का वाला है अच्छा मैसेज होता और कहना डेरा डेरा शुक्रिया और दूसरा नेक्स्ट कहना मैसेज गुरु चा वाला मैसेज पोते नशी जी जी मैसेज मैसेज मैसेज मैसेज जोन शाह तारिका
1: जी
0: मैसेज जोन
1: मैसेज
0: मैसेज जोन पोते नशी दास तो
1: जी दास तो बिल्कुल
0: ए सही अच्छा पूछो ओके जी वैसे सर मेरे पहले एसएमएस शामिल नहीं हुए सोनिया खान ओके जी शामिल है चेक टिक नहीं भेज दूं और इस तरह नेक्स्ट कहना हमें वैसे जिंदगी तो जीना है मन्नत हटक वैसे राज भाई आपकी अरबी को मन्नत हटक की तरफ से 10/10 मार्क्स और गजल शामिल करने के लिए थैंक यू सही ओके जी मोस्ट वेलकम हर कला रोशे जी نیکسٹ میسج صحیح صحیح روشے روشے غونڈ میسجن پٹاک روشے شاہ چاپو دینے شیو جی رکھیب خٹا کیا اگنورنگ از ناٹ ا سولوشن از اچھا ایف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو می جسٹ سیو ٹو می دین آئی ول نیور ڈسٹرب یو اگین واچوا رکھیب انگریز یہ جہان من حرکیبو تھینک یو سو مچ راز مامو مو فرمائش پورا کہ کنا وزیر بولو زبان کے ٹپا رہا تھا وہ کا اینڈ دروڑا چل کے کو ویلکم اینڈ سلام سلام امی گریٹ ملکہ اوکے جی صحیح ہے وزیر بولے کے دیتا بھی ٹھیک ہے صحیح ہے جی دا سیدھا مو میسج ہو کو اس میں بڑا بڑا کہنا ہے وزیر بولے کے تبھی دیسرے گرو کنا چی نیکسٹ میسجز چاپو تھے نشی سو جناب بالکل دس روتا لگی کہنا نوٹ میسج ہوتا مکا ہوئے ٹائم رو سر بھی ہی چیتا بلکہ پوسے پہ ویسے رہ کہنا اوور ٹائم کے چلے جو صحیح دائے دے سر سر کہنا وزیر وہ لائے بالکل سرنگ چال لائے جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں ترے کھانا
1: جی جی
0: بالکل اخری چیتا کہنا داغا وزیر وہ لائے داغا شمی لگو کہنا وہی چی ترے کھا لش کی توجہ دے گوڑا
1: جی جی
0: وہی آئی کہنا وہی چی یا خطایا دے زڑنا میں داوودو یا خدایا دې زړه مې داوودو چې دې مش خوږ وزیرستان بیا سره ګلونه شینه یا خدایا دې
1: وزیرستان بیا سره ګلونه
0: شینه یا خدایا دې زړه مې داوودو چې دې مش خوږ وزیرستان بیا سره ګلینه شینه او وخلکو خو ډیر دی په دنیا کې
1: خلق خو ډیر دی په دنیا شه
0: وا خلق خو ډیر دی په دنیا شه د وزیرستان خلق مې ډیر مینا ناک دینه